0: श्लोक
1: पावन गुरु पानी पितामह तरतमहत
0: देव सरातोय धाय धाय खेल संगल जगत
1: चनियाया बुरियाया बज धर्म दूर
0: कान में अपो आपने केने रखे तुन
1: जिन नाम दियाया केम शगद गाल
0: नानक टेम कुछले खेची छुट्टी नाम
1: जिनि नाम दियाया
0: केम शक्त का नानक थे मुकुछ ले खेती छुट्टी नाल जिनि नाम दियाया केम शक्त का नानक थे मुकुछ ले खेती छुट्टी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Bring your hands in prayer pose to the heart center to tune in. Inhale deeply. Exhale. Inhale.

करे, जिसनो एवद दे, जब में उत्तम कार्य बिरले के मेला पंजवन राके रखना आर आप बारी